0: प्रविधि मैत्री वातावरणमा कक्षा सञ्चालन
1: फारम वितरण 2083 श्रावण 1 गतेदेखि प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 29 गते बिहान 7 बजे कक्षा सञ्चालन 2083 भदौ 1 गतेदेखि सम्पर्क नम्बर 011-26-342 011-62-04-42 98-41-43-49-72 98-512-00-642

que o lugar de se cutrista se agase. Strange, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ. सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है. क्यों? रांझना?

राहें मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगे।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: आवारण फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वर टुटप ताबा कादेदा तयार लवन मुसुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 65 रङ्गिदा स्वागत मुला नबियोग तामाङ रङ्गदी मध्ये तिगाइसे हाल सालै नदा राङ्ला विश्वासनीयता मुक्तिला कथा कदे जुसुब मुला राङ्कदे नच्छ लानन अध्यारो परिस्थिति कदेला सामना लसुबा मुबा जहाँ बेनन ताम निराशाजनक म्राङ्मुला प्रत्येक अवस्थाले परमेश्वर से आवश्यक आश्चर्य कर्म कदे लसुजे जुन से लामा रङ रङला परिस्थिति डासुजे रङ्कदी मध्ये हालै दत्ते निराशला दुईला सामना लसु मुला रङ्कदे दत्ते दोना एन परमेश्वरला यासे रङला लुइरी फन्न गई खेन्दे रङ्कदे जुन निराशाजनक अवस्थिरे मुस्युला थेग्या मुक्त तागै बिसी ब्रान्जीब मुला भजन संग्रह 34 अध्याय 18 चूर्ण तिङ तब गदे बेनला ङम परमप्रभु मुस्युला देन निराशा तब गदेदा रोसे बचाव लसु मुला रङ्कदी मध्ये जो दत्ते संघर्ष लसु मुला परमेश्वरजे रङ्कदेदा बेनन प्रार्थना देन न्यानबन मुसुला परमेश्वरजे रङ्कदेदा खासुला अरे परमेश्वरजे रङ्ला ङाम मुसुला केन्द्रे परमेश्वरला योजना रङ्कदेदा रङ्ला निराशाजनक अवस्था ग्याम छुटकारा पिन्सुबा हिन्बा रोमी 5 अध्याय 3 हेन्जे 5 चुदे जे आहिन दुखरी नोन याङ ताङब मुला तिग्द विषम याङसे दुख नाजी विषम अझन याङ विश्वासरी पाको मि दोला दुख नखाम्बा शक्ति छे याङदा पाको मि सोला याङ पाको मि तमाहेन्से याङदा आस खमुला याङसे लामा चु आससे याङदा दुख नोनबा आल तिग्द विषम याङदा परमेश्वरसे रङला आत्मा पिन्ब मुला ओछे थेनोन आत्मासे याङला सेम्री परमेश्वरला माया थनबरी पिन्बा मुला परमेश्वरला बारेरी याकर्गी साचिन अचम्मला देन अद्भुत ताम चुहिन्बकी परमेश्वर याङला समस्या देग्याम मुक्त लभ्रेजेखेन हमला आरे तसै भविष्यरी याङदा लानन प्रभावकारी सेवाला लागरी तयार लरिबा लबरी याङसे भोक्तिबा थे संघर्ष कदे देन प्रयोग लबरी हम्बा मुसुला एफिसी 2 अध्याय 10 तिग्न विषम याङसे जब गे लगाई बिसे परमेश्वर से याङदा यीशु ख्रीष्ट याम छार मि शोभा हिन्दा थेसे नङबा अनसार ब्रगै बिसिन परमेश्वर से याङदा नच्छा हेन्सेन शोभा मुबा तयारी हाइमा दमन रमाइलो आतामुला यद्यपि रङसे भोग्दिबा पीडा ग्याम परमेश्वरदा लिच्छ रङदा छुटकारा पिन्सुला हेन्दे तिरम थे छुटकारा लिच्छ रङ भविष्यले थेनोन प्रकारला कठिनाइदा पार लब्रे रङला क्षमतारे लानन बाङमा तसुला चुला अतिरिक्त रङसे भोक्तिबा रङमन कठिनाई कदे अनुभव लजिबा सन्दोदा रो लबरी रङ लानन सुजित तसुला सायद रङसे स्वास्थ्य समस्या कदे देन संघर्ष लसुबा मुला देन परमेश्वरसे चमत्कार पुराण रूपरी रङदा फान्न लसुजी दार्यम रङदेन स्यान्दोदा फान्ना लावा विश्वास मुला सायद रङसे आर्थिक संघर्ष क्याम गुजरब तबा मुवा जब रङसे परमेश्वरसे रङदा चुग्याम छुटकारा पिन्छुबा अनुभव लस्युला रङ टाङ्गला आवश्यकता सन्दर्भरी परमेश्वरदा माइबका देदा समृद्ध शोभरी प्रोत्साहित लावरी हम्ला याकुब 1 अध्याय 2-4 नला जो जो आले आँगा गदे एनी गदे थोरी थरी थरीला आपत विपत खामा चु ताम दोबा ताम हिन्न बिसी मनगो तिग्दा विषम चुरङबा दुख नामा हेन्से एनी गदेला विश्वास क्याम अझ एनी गदे से ग्रेन ग्रेन दुख नखामला विव ताम एनी गदे दा थानोन मुला थेत बासेलमा एनी गदे थोरी खबा जम्मन दुख पुराण नागो चुरङ लसी विषम एनी गदे जत्तोन दुख तसै नोन नखाम्बा पाको मितोला जबयाङ लुइरी कटिनाई कदेला सामना लामुला चुसे परमेश्वर फिरला याङला विश्वासला परीक्षा किनमुला निराशाला चु दुइरी याङ रो फिरि भरोसा लाबरे लोपन निभा याङ परमेश्वर से याङदा खेरङमा मेरी गप्पा अनुमति तिनला जो सन्दोदा लानन्देन तरिकासी रो लाबरे हामला तामुला कठिनाई कदिग्याम याङसे अनुभव लाबरे हामला आनन्द ओत्ते बेला याङसे भोग्दिबा पीडाला कारणसे आइन्बा तसै चु भविष्यरी परमेश्वर से याङना लागि थान्बा छुटकाराला प्रतिक्रियारी याङला भरोसा हान्सी हाला आमेन। रङ्गिला जीवनले परमेश्वर से लानन लानन आशिष पिन्छु गई आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्छुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339। धन्यवाद। हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङमदानु जय मसी नमस्कार।
0: टाइम चेक इज 7 PM।